0: नया नेपाल को नया रेडियो
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज
2: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला बिहानको 9 बज्यो।

0: बोर्डिंग स्कूल कैंपस का ड्रेस सुपथ मूल्य में तैयार कर।
1: प्रोपाइटर रमेश परियार, संपर्क मोबाइल नंबर
0: 9870254843।
1: स्थान धादिंग बेसी सुगम टोल मुक्तिनाथ बैंक को ठीक अगाड़ी।
0: घर त बल्ल बल्ल बनाई भ्याए, अब ग्रिल यूपीभीसी अल्मुनियम को झाल ढोका फिटिंग कर पो झ्याल छैरा नई बनायो भने एउटा सके अर्को काम आई लगी हाल्दी स्वास्थ्य मस्त में कह गए ल्याउने होला।
1: अहिलेको जमानामा पनि टेन्सन लिने हो र अंकल, अन्त कहीं जानु पर्दैन। धादिंग बेसी स्थित धादिंग अस्पताल को पछाडी सिद्धार्थ ग्रिल स्टील यूपीभीसी एण्ड अल्मुनियम हाउस छ। यहाँ त आईएसओ नेपाल गुणस्तर मान्यता प्राप्त यूपीभीसी अल्मुनियम का झाल ढोका बनाउनुका साथै फलाम स्टील सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ नि। यूपीभीसी र अल्मुनियम का सामान अन्तभन्दा होलसेल मूल्यमा पनि पाइन्छ।
0: ए त्यसो भए सम्पर्क नम्बर भन त, म आजै गइहाल्छु। 1227 को कुरा सुन्दिन म।
1: ल टिप्नुहोस्। प्रोपाइटर गिरबहादुर श्रेष्ठको लागि 9843-0957-437 र 010-590-093 मा सम्पर्क गर्नुहोला नि।
0: हजुर, विगत 10 वर्षदेखि तपाईहरुकै सेवामा तत्पर सिद्धार्थ ग्रिल स्टील यूपीभीसी एन्ड अल्युमिनियम हाउस नीलकण्ठा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 धादिङ अस्पतालको पछाडी। प्रोपाइटर बिरबहादुर श्रेष्ठ। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9843-0057-437।

0: सीआरपीटी 0144011697
1: महिला आवाज को सीआरबीटी 0144011698
0: पुरुष आवाज को पीआरबीटी 6021033 8
1: महिला आवाज को पीआरबीटी 6021033 9